0: 2007 प्राप्त नौ वर्ष को वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: शहीद मेमोरियल अस्पताल धारिंगसी में हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण।
1: यदि तपाई वा परिवार का कुनै सदस्यमा लागू औषध सम्बन्धी दुर्व्यसनी, छारे रोग, निराश हुने, काममा मन नलाग्ने, आलस्य हुने, निन्द्रा नलाग्ने, बिर्सने, शरीर झमझम हुने, धेरै डर लाग्ने, मुटु ढुकढुक हुने, धेरै शंका गर्ने, अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने, आत्मबल कमजोर हुने, बच्चाहरूमा सुस्त मनस्थिति आउने समस्याहरू छन् भने हरेक महिनाको पहिलो शनिबार शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्।
0: पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण
1: शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिंग सीमा हरेक महीना को पहले शनिवार मानसिक रोग वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण
0: थप जानकारी को 010-520-238 010-520-238 में संपर्क कर
1: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल प्रणाली धादिंग व्यक्ति द्वारा जनहित में जारी संदेश।
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: रेडियोधारी समय संकेत
1: अहिले बिहानको 9 बज्यो।
2: शिवम सीमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै शिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा।

रेडियो एक सौ समय गहर उसका साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को www.redhaman.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजे को खबर में मेक को नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य खबर पीरियड में रहकर सरकार ने प्रश्न प्रश्न थुपारी सांसद श्रेष्ठ को भनाई सिद्धले गांवपालिका पुनः खोप सुनिश्चितता तथा

0: money in.
1: Extreme energy drink.
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: इनफिक्स, एमआई, मैजू, कलर्स, लाभा, एमटेक, टेक्नो, आईटेल ब्रांड का मोबाइल, घड़ी, साउंड सिस्टम, डिसोम, पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान पाइन का साथ ही पुरानो मोबाइल लिये नया मोबाइल साटिं।
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंग सी मिलन टोल लेकाली टिकट काउंटर संगे प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ। संपर्क मोबाइल नंबर 9841063130 और 9813183307।

0: Secretary Saman,
1: Adhikari Saman,
0: Bajor Prince,
1: Adhikari Saman,
0: Dara Kitin,
1: Adhikari Saman,
0: Kyle Marvel,
1: Adhikari Saman.
2: ए दाई की को नारा बाजी हो दाई
3: अधिकारी सप्लायर्स के बारे में जानकारी दिदै हिडेको हो नि
2: के हो न त हामीलाई नि

0: Patagonia Extreme Energy Drink.
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

धारी 100 गहर्ज का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.redhari.org मार्फत संसार भरकै साथ प्रसारण भइरहेको बेलुका 38 बजे को खबर में वेकको नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य खबर विश्व वातावरण दिवस धादिंग में मनाइयो एमपैक्सन धादिंग द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता नीलकंठ बहुमुखी